जीव जंत उस पानी अंदर रहने वाले हैं। फिर तेन उन्होंने पहाड़ से जरूर व्यापदा होगा, इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं, कितना पानी ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा नहीं।

पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए तां कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। सत सिखत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्री दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मैता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नू बिठाया कोल, कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मेनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हो। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सत सचित बोलो श्री। ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज बालक ओ बालक पैदा होया जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर रहा है। प्यारी सात सिंगत, आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा

जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच हे निरंकार तू आद विच भी सच है जुगाद विच भी सच है हुन भी सच है ते सच

बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गई। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी किवें ना आखो मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदो निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डुब गया लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है वो कदे डुब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया आवाज आई बेबे करतार चित आवे उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया।

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे तां इन्हां कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना है। साथ सिखत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ये सारियां सिफरां हन, सिफरां ये सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन, जप तप हन, बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नु हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणा। सत सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह बाणी विच कहंदे हन, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका

0: हे मेरे मन, उस करते पुरख दी आराधना कर। हे मेरे मन, उस करते अकाल पुरख दी उस्तत कर। वड़ियाई कर, कीड़ा करता अकाल पुरख जिन्ने सारा जग बनाए, जिना सब कुछ कर करा रहे ओ करता, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करने योग है, उस करते पुरख दी सलाघा कर। हे मेरे मन, एक मिनट भी उस करते पुरख नू विसारना, याद रख वो करता पुरख जिसने तेनू संसार ते भेजे है, तू ओदी वड़ियाई विच जुड़ जा, ओदी बेअंतताई विच लग जा।
1: मन मेरे करते नू सलाघा।

करो सदा प्रभ अपने मन मेरे करते नू सहलाए। होर वस्तुआं दी बड़ी उस्तत कर दे, ए चीज बड़ी खूबसूरत, ए चीज बड़ी चंगी, ए भोजन बड़ा सोहना बने, बड़ा स्वाद लै, ए वस्तु बड़ी ही अच्छी है, एदे वर्गी संसार ते कोई भी चीज नहीं। होर बड़ियां उस्तां कर दे, बड़ा कुछ आखद है, मनुख दी भी उस्तत बड़ी कर दे, पर जिहदी उस्तत करन योग है उसी कदी कीती ही नहीं, कदी उसनू सलाया ही नहीं कि असली जिहड़ी उस्तत करन वास्ते सी संसार ते आए हां उते कीती नहीं। ऐसा ही सवाल मरदाने दे अगे साहिब गुरु नानक साहिब ने कीता, आखिया मरदाने आ की करन, आखदे साहिब जी लोकां दी उस्तत करन ते अपना घर दा गुजारा चलान, ते साहिब आख लगे मरदाने आ लोकां दी उस्तत ना कर, आ मैं तेनू अकाल पुरख की उस्तत करनी दसा, अकाल पुरख की उस्तत करिया कर, यह तो उस्तत झूठी है लोगों की करनी, अकाल पुरख की कर, यह सच्ची उस्तत, यह उस्तत करेगा कभी भी भुखा नहीं रहेगा। यह गुरु नानक का वर हो मरदानी साहबा ने उस्तत दे विच ला दिता, आप भी जुड़ जाते सन ते मरदाने नू भी जोड़ लेंदे सन। चल मरदाने आ बाणी आई आ छेड़ रबाब, कीर्तन विच लीन हो जाना ते अकाल पुरख की उस्तत करनी, ओही जोत सानू उपदेश कर रही है, हे मन अकाल पुरख की उस्तत कर, मन मेरे करते नू सहलाए, उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

हलन निवास जैसे मीन की ना घटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की।

0: साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओए कर कर सुनिया
1: कर कर किवें सुनिया गया हिर

अज तो बाद तू अंदर नहीं जा सकता, बिना पुछया तू अंदर नहीं जा सकता, तेरे पास भेटा होवेगी, प्रसाद होवेगा ते अंदर जा सकता। पर सुथरा इतना गरीब कितों धन लियावे, रोज दीदार करन वास्ते कितों माया लैके आवे, कितों प्रसाद लियावे। पाबंदी लग गई, पर हर वक्त सतगुरां दे चरणां विच रहण वाला सुथरा हुण सतगुरां दे दीदार तो बगैर किवें रह सकदा। अमृत वेला होया, अंदर जाण लगा, पहरेदारा ने बांह तो फड़िया, रोक दिता। मन विच बड़ी सट वजी, पहरेदारा ने पाबंदी ला दिती। शाम पई, फिर जाण लगा ते पहरेदारा ने झाड़ पाई सुथरिया, किन्नी क वार तेनू कहना पवेगा अज तो बाद तू अंदर नहीं जा सकता, तेरे पास भेटा होवेगी मत्था टेकण वास्ते ते अंदर जा सकता। सुथरे दे नेत्रां चो जल वहण लग पे, मन भर गया, सारी रात लंघ गई। दूजा दिन होया अमृत वेला, हुण मन बेबल है केड़ा वेला होवे सतगुरां दे दीदार हो। नेता पर सतगुरां दे चरणां विच रहण वाला अज दो दिन दर्शन ना होए, नेत्रां चो जल वहण लग पे। पर बाहर बैठिया मन विच एक ख्याल उत्पन्न होया, मना जे झूठ भी बोलना पवे सतगुरां दे दीदार करन वास्ते ते कोई अर्ज नहीं, अपने वास्ते झूठ तां नहीं बोलना, दीदार वास्ते झूठ बोलना है। मन विच फुरना बन गया, जे माया नहीं प्रसाद नहीं ते एक रेत दी पंड बन लैना, रेत दी पंड बनी सिर ते ते दूरों आवाज देंदा जांदा, कहिंदा राह छड़ दिओ, गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे। रेत दी पंड सिर ते चुकी, पहरेदार परे हट गए, सुथरा अंदर लंघ गए। जदों अंदर लंघ गया, सतगुरु जिथे बैठे सन थोड़ी दूर ओ रेत वाली पंड रखी, ते सुथरा पंड दी परिक्रमा करन लग पिया। बार बार पंड नूं नमस्कार करदा, बार बार परिक्रमा करदा, मत्था टेकदा। सेवादारा ने तकिया, सतगुरु ने बेनती की, सतगुरु आ तकिया जे सुथरा आप सिंघासन ते बैठे हो ते पंड नूं मत्था टेक रहा है। साहब कहन लगे सुथरे अज की हो गई। सुथरा पब्बा मार के रो पिया, कहन लगा पाछा अज इस पंड नूं मत्था ना टेका ते किनू टेका, अज इहदी परिक्रमा ना करा ते किहदी करा। पाछा अज तेरे पहरेदारा ने पाबंदी ला दित्ती कि तू दीदार करन अंदर नहीं जा सकदा, तेरे पास भेटा होवे ते अंदर जा सकदा। पाछा मैं कित्थों धन लिया, कित्थों प्रसाद लियावां, अज तेरे पहरेदारा नूं झूठ बोल के आया कि गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे हां। पाछा रेत दी पंड है, अज एदे सदका तेरे दीदार हो गए, एदे सदका अज मैं अंदर आके तुहाडे चरणा विच सेवा कर सकदा। बादशाह इहनू मत्था ना टेका ते किहनू टेका, जिहदे सदका तेरे दीदार हो गए। गुरु कलगीधर पातशाह ने सुथरे नूं गलवक्कड़ी विच लै लिया, प्यार कीता घुट के, कहण लगे अच्छा जा सुथरिया, तेरी ए भेटा दी परवान, भावें तू रेत दी पंड लै के आया है, जा अज तो बाद लंगर विच इसे रेत नाल भांडे मांजे। आदार हो गए, आओ भाई अज आपां भी मांग लईए मेरे हाथ।

धन गुरु नानक पातशाह एक लोटा नाले विच सुट दिता। आख्या श्री चंद पुत्र आ लोटा तो कढ लिया, महाराज कोई सिख आउंदा है उनू कह देवांगे कढ ले आएगा। लक्ष्मी दास पुत्र तू लोटा कढ ले भाई नाले विच। महाराज हुणे कोई सेवादार आंदा है एवें लिबड़ जावांगे गंदे नाले विच वड़िए तुहाडे पुत्र होके। कोई आवेगा हुणे कढ दे। धन गुरु नानक पातशाह भाई लैणे वल निगाह कीती, लैणे आ भाई लैणे ने अपने वस्त्रां दा अपने शरीर दी परवाह नहीं कीती। भई चिक्कड़ विच लिबड़ जावांगा सत वचन कीता। सतगुरां दी आग्या सत सत करके मन्नी ते उस लोटे नूं गंदे नाले विचों कढ लिया। धन गुरु नानक पातशाह कहण लगे भाई किसे नूं चिक्कड़ विचों कढ़न वास्ते आप चिक्कड़ विच वड़ना पैंदा। ये अनेकां दा तारन तहार होएगा, अनेकां तरनगे इहदे सदके। ते समा आया फिर गुरु अंगद देव पातशाह दूसरे गुरु नानक बन गए सेवा दे सदके। भाई बाला जी एक वारी पुछन लगे महाराज आ तुसी साडे तो पिछे आए हो ते गद्दी दे मालक बन गए हो ते असी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच बचपन तो नाल रहे हां कठे रहे हां। उचारण करो श्री वाहे। इहदा कारण की है? थोड़ा ही समा होया तुसी आयो ते सारियां दातां लै गए तुसी ते असी बचपन तो कठे रहे सेवा विच रहे, सेवा भी भावना नाल कीती ते असी ओ कुछ क्यों नहीं बन सके जो कुछ तुसी बने हो। धन गुरु अंगद देव पातशाह कहण लगे बाला जी ए दसो तुसी गुरु नानक नू की समझे, किस नदर नाल उना दी सेवा कीती है। बाला जी कहण लगे मैं तां पूर्ण महापुरख समझ के संत समझ के सेवा कीती है। गुरु अंगद देव महाराज कहण लगे फिर तुसी केड़े संत तो घट हो, तुसी संत समझ के सेवा कीती है ते तुहानू संत बना गए हन। महाराज तुसी की समझ के कीती सेवा? गुरु अंगद देव महाराज कहण लगे मैं निरंकार समझ के सेवा कीती है। उचारण करो श्री, साथ संगत बोलो श्री। चाकरी करदिया होया सेवक दी बिरती इतनी उच्ची होवे ते फिर हजूर कहंदे ने फिर ए नदर ए बख्शिश ए सारे संसार नूं तारन वाली बख्शिश हो जावेगी।

तुर्क दुष्ट सब शह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे को

इयो ऐसे दंत कलेश में खपियो संसार तह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा गह ऐसे खड़े।